0: गलतियों से बचने के तरीकों से आगाह किया। रिटर्न जमा करवाने से पहले एटीओ की सरकारी वेबसाइट जरूर देखें, और यहाँ ये याद दहानी भी कि ये सिर्फ आम या जनरल नौइयत की मालूमात आपको फराहम की गई है। अपने खसूसी हालात के पेश नज़र टैक्स रिटर्न से मुतालिक मालूमात और मुशावरत के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट और टैक्स रिटर्न प्रोफेशनल से राबता कीजिए।
1: SBS उर्दू SBS साउथ एशियन पर।
2: जी सामईन, इसके साथ ही आपको नशरियात में सुनवाते हैं एक और गीत, तिनक दिन सुनवाते हैं अली हमजा की आवाज़ में।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. शुक्रवार 12 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बात है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े कुछ मुद्दों की. सिडनी के दूसरे हवाई अड्डे की भी बात करेंगे और मुलाकात करेंगे OMM से सम्मानित एक भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ. भारत की रिपोर्ट के साथ कुछ गाने भी होंगे और आज गाने चुने हैं 80 के दौर के. आपको क्या लगता है, क्या कोई खास बदलाव आया था उस दौर में? क्या सोचते हैं आप? और हाँ, आपको देने के लिए आज मेरे पास है मेलबर्न में होने वाले नाटकों के डबल पास भी. उसकी जानकारी आगे देती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि 80 के दौर में क्या कोई खास बदलाव आया था बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया में. आप इस बारे में सोचिए और मुझे बताइए 0439-799-767 पर. और अभी न्यूज़ फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 12 जून के लिए यह है न्यूज़ फ्लैश और मैं हूँ अनीता बरार. केंद्र सरकार का कहना है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली के त्यागपत्र का ऑकस पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा. केंद्रीय उद्योग और इनोवेशन मंत्री टिम आयर्स का कहना है कि मंत्रियों में बदलाव के बाद भी ये व्यवस्था बनी रहेगी क्योंकि इसे जारी रखना तीनों देशों ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के हित में है. हीली के जाने की घोषणा एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स भी शामिल होने वाले थे. कोलिशन नेता एंगस टेलर का कहना है कि ये घटनाक्रम केंद्र सरकार के लिए एक झटका है और इससे ऑस्ट्रेलिया की रक्षा सेना में खर्च पर नए सिरे पर विचार करना चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा करने के बाद कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए एक डील पर जल्द ही साइन हो सकते हैं, यूएस स्टॉक्स 2 महीने में सबसे अच्छे दिन पर हैं और तेल की कीमतें गिर गई हैं. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सप्ताहांत में यूरोप में एक साइनिंग सेरेमनी होगी जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल होंगे. ऑस्ट्रेलिया ने यूके और कनाडा के साथ मिलकर एक पीस फंड लॉन्च किया है जिसका मकसद इजराइल फिलिस्तीन के लिए दो देशों वाले सॉल्यूशन को सपोर्ट करना है. हर देश इस पहल में 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर देगा जो ज़मीनी स्तर के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा जिसमें यूथ ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी संगठन शामिल हैं. आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर श्रोताओं को सलाह कि अगला समाचार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो मृत है. इंडिजिनस एजुकेशन और लीडरशिप के सपोर्टर प्रोफेसर पीटर बक्सिन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जा रहा है. साउथ ऑस्ट्रेलिया के यॉर्क पेनिनसुला के एक गर्वित नारुअंगा व्यक्ति ने कम्युनिटी के नेतृत्व वाली और कल्चर पर आधारित लर्निंग की बात की और फर्स्ट नेशन एजुकेशन का माहौल बदल दिया. 4 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने एक टीचर के तौर पर काम किया, फिर राज्य और फेडरल सरकार दोनों में सीनियर एग्जीक्यूटिव भूमिकाओं में काम किया. साथ ही नेशनल एबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर एजुकेशन कॉरपोरेशन के पहले चेयरमैन भी रहे. भारत बांग्लादेश ने सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली में हुई बैठक में सीमा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई जिसमें घुसपैठ से लेकर मौतों तक के मुद्दे शामिल हैं. NDTV से मिले समाचार के अनुसार 8 से 11 जून तक दिल्ली के BSF मुख्यालय में चली भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय वार्ता के दौरान बॉर्डर से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बनी. संयुक्त गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, रियल टाइम सूचना साझा करने, सीमा पार सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने को लेकर भी दोनों देशों के सिक्योरिटी फोर्सेस ने एकजुटता दिखाई। और फुटबॉल की बात करें तो वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट के पहले दिन साउथ कोरिया ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चेक रिपब्लिक पर 2-1 से रोमांचक जीत हासिल की। सब्स्टिट्यूट ओ हुन यू ने 80वें मिनट पर आखिरी गोल किया। इससे पहले को-होस्ट मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका पर 2-0 से जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। साउथ अफ्रीका और मैक्सिको के बीच वर्ल्ड कप का पहला खेल जिस स्टेडियम में हो रहा था उसके बाहर पुलिस से भिड़ने के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। सड़क बंद होने के बावजूद कम से कम 5 अलग अलग प्रोटेस्ट ग्रुप स्टेडियम में जमा हो गए थे। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात करते हैं उन बड़े मुद्दों की जो इस फीफा वर्ल्ड कप इसकी कहानी को सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहने दे रही, बल्कि नई तकनीक का बढ़ता असर, टिकटों की बढ़ती कीमतें जो फैंस की पहुंच को चुनौती दे सकती हैं, और मेजबान देशों से जुड़ी मानवाधिकार चिंताएं जो लगातार चर्चा में हैं, और इन मुद्दों पर प्रकाश भी डल रहा है। तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट जो आप तक लाई हैं भव्या पांडे।
2: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ, और आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात कर रहे हैं 2026 फीफा विश्व कप से जुड़े उन मुद्दों की जो मैदान के खेल से आगे जाकर इस टूर्नामेंट की दिशा और छवि को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें शामिल है टेक्नोलॉजी और VAR का बढ़ता प्रभाव, टिकटों की कीमतों में बदलाव, प्रसारण अधिकारों की जटिलताएं और मेजबान देशों में उठ रही मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स संबंधी चिंताएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस VAR और फुटबॉल की नई तकनीकी दुनिया की। फीफा 2026 को अब तक का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वर्ल्ड कप बताया जा रहा है। इस बार खेल को सिर्फ रेफरी नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर और डेटा सिस्टम भी लगातार मॉनिटर करेंगे। इन तकनीकों में शामिल हैं सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड सिस्टम्स, मैच बॉल में लगे सेंसर, AI आधारित खिलाड़ी ट्रैकिंग और रियल टाइम ब्रॉडकास्ट एनालिटिक्स। इन सभी का उद्देश्य है निर्णय प्रक्रिया को तेज और अधिक सटीक बनाना।
3: As we already know that semi automatic offside cameras support will be there, and then the whole chip inside the ball to track every touch, every motion, and that the whole analytics around the viewing experience for the fans and for the broadcasters, because more than 45 cameras will be in use.
2: मैच बॉल में मौजूद सेंसर ये पहचान सकेगा कि गेंद को किस क्षण छुआ गया, जिससे ऑफसाइड जैसी सिचुएशंस में फैसला करने में मदद मिलेगी। इसका असर सीधे रेफरी के निर्णयों और VAR सिस्टम पर पड़ेगा। फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने इस तकनीकी बदलाव को लेकर कहा,
4: With AI enabled 3D players avatars, we are introducing precise player identification and tracking, which means great images, faster decisions by the referees, and a clear understanding by everyone.
2: हालांकि ये तकनीकी प्रगति जितनी तेज है उतनी ही तेज इसके खिलाफ बहस छिड़ गई है। VAR के आने के बाद से ही फुटबॉल समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पक्ष का मानना है कि इससे गलत फैसलों में भारी कमी आई है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि इससे खेल की स्वाभाविक गति और भावनात्मक प्रवाह यानी नेचुरल फ्लो टूट जाता है। कई पूर्व खिलाड़ी और प्रशंसक ये भी मानते हैं कि गोल या फाउल के बाद लंबे समय तक चलने वाली समीक्षा प्रक्रिया दर्शकों के अनुभव को प्रभावित करती है। यानी सवाल सिर्फ तकनीक का ही नहीं बल्कि फुटबॉल के साथ जुड़ी फैंस की भावनाओं का भी है। बात करें प्रसारण की तो विश्व कप केवल मैदान पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट नहीं, ये एक वैश्विक मीडिया इवेंट भी होते हैं। लाखों करोड़ों दर्शक इसे टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। हालांकि 2026 से पहले भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों में ब्रॉडकास्ट राइट्स यानी प्रसारण अधिकारों को लेकर अनिश्चितता बनी रही है। भारत में लंबे समय तक बातचीत के बाद जी एंटरटेनमेंट ने 39 फीफा इवेंट्स के प्रसारण अधिकार हासिल किए जो 8 वर्षों तक लागू रहेंगे। चीन में चाइना मीडिया ग्रुप ने अगले 4 विश्व कपों के अधिकार 2031 तक सुरक्षित कर लिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर फुटबॉल प्रशासन से जुड़े शाजी प्रभाकरण बताते हैं।
3: The World Cup rights for India, it took a bit long, but then once the announcement came, there is complete relief among the fans, and I'm sure this partnership what FIFA has found in G definitely will add value to Indian football as well.
2: उनका ये भी कहना है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवा दर्शकों में। जहां पहले हमें सिर्फ क्रिकेट का दबदबा देखने को मिलता था, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फुटबॉल भी बड़ी संख्या में फैंस तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया,
3: इन द लास्ट वर्ल्ड कप इन कतर इंडिया वाज द सेकंड हाईएस्ट टिकट होल्डर्स या आफ्टर सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया टीम वाज प्लेइंग एंड दे हैड अ यू नो वेरी ग्रेट स्टार्ट बीटिंग अर्जेंटीना एंड दे वर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्री।
2: ये बयान दिखाता है कि भले ही भारत में राष्ट्रीय टीम विश्व कप में नियमित रूप से हिस्सा न लेती हो, लेकिन दर्शक संख्या और जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इन मैचों की टिकट्स किस तरह से हासिल होती है। 2026 विश्व कप की एक और बड़ी चर्चा टिकटों की कीमतों को लेकर हो रही है। इस बार पहली बार पुरुष विश्व कप में डायनामिक प्राइसिंग मॉडल अपनाया गया है। इस प्रणाली में टिकटों की कीमतें मांग यानी डिमांड और उपलब्धता यानी सप्लाई के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैच करीब आते हैं और मांग बढ़ती है, कीमतें भी तेजी से बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि कई मैचों के टिकट 2022 कतर विश्व कप की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियाई मैचों के टिकट सैकड़ों डॉलर से लेकर 1000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से भी अधिक कीमत पर बिक रहे हैं। ये बदलाव खासकर सामान्य दर्शकों के लिए चिंता का विषय बन रहा है, जो पहले विश्व कप को एक बार जीवन में मिलने वाला अनुभव मानकर योजना यानी अपना प्लान बनाते थे। फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है,
4: इफ सम पीपल पुट ऑन अ सेकेंडरी ऑन अ रीसेल मार्केट सम टिकट्स फॉर द फाइनल एट $2 million, number one, it doesn't mean that the tickets cost $2 million. Number two, it doesn't mean that somebody will buy these tickets. Actually, if somebody buys a ticket for the final $2 million, I will personally bring him a hot dog and a coke to make sure that he has a great experience.
2: वहीं फीफा का कहना है कि टिकट बिक्री से मिलने वाला रेवेन्यू वैश्विक फुटबॉल विकास में पुनर्निवेश किया जाता है, जिससे छोटे देशों और युवा खिलाड़ियों को भी लाभ मिलता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स और पूर्व अधिकारी इस मॉडल को लेकर सतर्क हैं। शाजी प्रभाकरण ने भी कहा है कि बढ़ती लागत, यात्रा, आवास और टिकट की प्राइसिंग कई प्रशंसकों के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है।
3: There are people going. Definitely, this number might not be anywhere closer to what we witnessed in Qatar because it was more than 55k from India who traveled for the World Cup. Definitely, will not be an insignificant number. There will be quite a lot of people traveling that I know because definitely the costs are high, but the people are having high disposable income.
2: उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि 2022 कतर विश्व कप की तरह इस बार इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय दर्शक यात्रा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो होस्ट कंट्रीज होती हैं, उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। खेल के साथ साथ अब विश्व कप मानवाधिकार बहसों का भी मंच बन गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के अभियानकर्ता जाकी हैदरी ने अमरीका में चल रही आवर्जन नीतियों यानी इमिग्रेशन पॉलिसीज और कानूनी व्यवस्था के कड़े प्रवर्तन को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बड़े खेल आयोजनों के दौरान सभी दर्शकों, पत्रकारों और प्रतिभागियों को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए।
5: Our call to the US government and FIFA is that while these games are happening, there should be a hold on arbitrary arrest of ICE agency. People should have the right of feeling free and feeling protected while they participate in these games.
2: वहीं मानवाधिकार संगठनों का भी ये कहना है कि पत्रकारों और नागरिक समाज संगठनों को बिना किसी डर के रिपोर्टिंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
5: FIFA does have the power in the host countries and the host cities as well to make this upcoming match a place where people should not be fearful of going and watching and celebrating a game because of their race, gender identity or their visa status.
2: वहीं दूसरी ओर FIFA का कहना है कि उसकी नीतियां जीरो टॉलरेंस पर आधारित हैं और वे भेदभाव, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है। इन सभी पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो 2026 फीफा विश्व कप केवल खेल ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, मीडिया और राजनीति का एक वैश्विक संगम बनता जा रहा है। VAR और AI से लेकर टिकटों की कीमतों और ह्यूमन राइट्स की बहस तक हर मुद्दा ये दिखाता है कि आधुनिक फुटबॉल अब सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रह गया है। तो ये टूर्नामेंट जितना खेल के लिए याद किया जाएगा उतना ही उन चर्चाओं के लिए भी जो खेल से बाहर हो रही हैं। दोस्तों, हम विश्व कप से पहले एक और विशेष एपिसोड के साथ वापस आएंगे जिसमें हम टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ियों से क्या उम्मीद की जा सकती है इस पर चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कप डेली द 90+ पॉडकास्ट पर ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। वर्ल्ड कप की नवीनतम खबरों के लिए SBS न्यूज हेडलाइंस सुनिए जो आपके पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आए भव्या पांडे।
1: तो श्रोताओं, आपने ये रिपोर्ट सुनी और आपको कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बताया था कि हम मेलबर्न में नाट्य दर्पण द्वारा आयोजित कुछ नाटक जो हो रहे हैं उसकी हम आपको डबल पास दे रहे हैं। तो आपको जानकारी दे दूं कि नाट्य दर्पण की तरफ से प्रस्तुति हो रही है 20 जून शनिवार 20 जून को चैंडलर थिएटर में। समय रहेगा 1 बजे का और आप देख सकेंगे 2 नाटक एक ही सेशन में। जी हाँ, नाटक है शादी सिलेबस और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड। तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, बस आपने अपना नाम भेजना है, अपना ईमेल एड्रेस भेजना है और बताना है कि क्या आप नाटक देखना चाहते हैं और क्यों, किस लिए आपको नाटक देखने का शौक है। और अगर आप चाहें तो कुछ और भी आप उसके बारे में जानकारी हमें दे सकते हैं। आपके नाम ड्रॉ में जाएंगे और उसके बारे में और जानकारी भी कार्यक्रम में मैं आगे दूंगी। अभी समय हुआ है एक अंतराल का, मिलती हूँ इसके बाद।
6: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
7: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
6: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से। देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
7: इनसाइड SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
6: SBS न्यूज इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS न्यूज इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
8: SBS Audio.
7: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
9: यहीं जाओ दालिया. चुनबे हाल में.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
13: Far from the partisan politics.
7: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
8: sbs.com.au/audio.
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, आपने कार्यक्रम में पहले फीफा के मुद्दे से जुड़े कुछ बातें सुनी और मैं आपको बताने जा रही थी कि कुछ हम बातें चाह रहे हैं, यानी नाट्य दर्पण की तरफ से हम आपको एक नाटक के लिए आपको वो भी दे रहे हैं, गिव अवे पास कर रहे हैं. तो आपसे जानना ये चाह रही थी कि क्या आप नाटक देखना चाहते हैं और उस नाटक में आपको, जब आप नाटक देखने जाते हैं तो आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है. तो इन सब के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आपके पास, आपको देने के लिए मेरे पास हैं नाटक के पासेस. नाट्य दर्पण की तरफ से दो नाटक दिखाए जाएंगे 20 जून को और उनके नाम हैं शादी सिलेबस और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड और पहला नाटक है शादी सिलेबस. दोनों ही नाटक जो हैं एक ही सेशन में दिखाए जाएंगे 20 जून, चैंडलर थिएटर में है, 1 बजे से शुरू होगा. तो ये मेलबर्न के लिए है, तो मेलबर्न के श्रोताओं से मैं चाहूँगी कि आप अपने संदेश भेजें मेरे को और अपनी राय भेजें कि नाटकों के बारे में आप क्या सोचते हैं. और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताने जा रही थी कि आज जो गाने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए उनमें हैं 80 के दशक के गाने. तो 80 के दशक के गानों की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या ऐसा बदलाव आप देखते हैं, क्या कोई बदलाव आया था 80 के दशक में, उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ. और ये भी जानना चाहती हूँ कि किस चीज़ से आप 80 के दशक को जोड़ पाते हैं, यानी वो जो संगीत था उसको आप किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में भी आप से मैं जानना तो चाहूँगी ही. यानी आप ये सोचिए कि मैं आपसे बहुत सारी बातें जानना चाह रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने जो संदेश हैं उन्हें आप मेरे पास भेजेंगे. तो आगे कार्यक्रम बढ़ाने से पहले भारत की रिपोर्ट तो मैं आपको सुनवाना चाह रही थी लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है. तो भारत की रिपोर्ट मैं आपको इस अंतराल के बाद सुनवाती हूँ और उम्मीद करूँगी कि इस बीच में आपके संदेश मेरे पास आते रहेंगे. तो मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद.
14: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
15: SBS World News, breaking news और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS World News हर रात 6:30 बजे SBS और SBS On Demand पर. SBS News In Depth Podcast, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News In Depth आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं. जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है. sbs.com.au/guide पर जाएं.
7: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे. हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर.
15: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
8: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, भारत से रिपोर्ट बहुत जल्दी ही आप तक आएगी, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं ये एक गाना भी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये गाना पसंद आएगा। और मैं बात कर रही थी कि आज के गाने हैं 80 के दशक के, तो आप बताइएगा कि 80 के दशक में ऐसी क्या खास बात थी। सुनते चलते हैं ये गाना।

0: और आइए श्रोताओं, चलते हैं भारत की तरफ और वहां की रिपोर्ट जानते हैं हमारे संवाददाता विश्व रत्न के साथ।
1: फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज कहते हैं,
2: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी ट्रैवलिंग टू एवियन फ्रांस टू पार्टिसिपेट इन द 52nd G7 समिट व्हिच इज टू बी हेल्ड फ्रॉम 15 टू 17 जून where India has been invited as a partner country. The visit will provide an opportunity for the Honorable Prime Minister to engage with the world leaders present at the G summit on issues of importance to India as well as to the global south. This will be India's 13th participation at the G7 summit and Prime Minister Mr. Modi's 7th consecutive participation at the summit. On 16 and 17 June, the days dedicated to outreach sessions of the G7 summit, the Prime Minister will participate alongside other invited countries.
1: 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 में भारत को साझेदार देश के रूप में आमंत्रण मिला है। बैठक के दौरान चर्चा के विषयों पर बताते हुए सीबी जॉर्ज ने कहा,
2: The discussions will broadly cover focus on the renewal of international partnerships and development solidarity, fostering shared and balanced growth, and effective and efficient rollout of artificial intelligence. India's regular participation at the G7 summits reflects the increasing recognition of India's role and contributions in addressing global challenges relating to peace, security, development and environmental sustainability.
1: G7 के इतर भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन संयुक्त रूप से नीस में भारत इनोवेट्स पहल का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव इस बारे में बताते हैं।
3: ड्यूरिंग द विजिट टू नीस प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस विद प्रेसिडेंट मैक्रॉन covering full range of areas of our partnership as well as they will exchange views on regional and international issues of importance. Prime Minister Modi will also jointly inaugurate Bharat Innovates along with President Macron. Bharat Innovates is a landmark initiative that showcases India's innovation journey to a global audience. Our startup ecosystem, deep tech startups, our digital public infrastructure, our advances in defense, space and clean energy, and contributions of Indian talent to global technology.
1: ईरान के विरुद्ध जारी अभियान के दौरान अमेरिका ने भारतीय चालक दल वाले जहाजों पर भी हमला बोला है। इसमें 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस हफ्ते ओमान की खाड़ी में इन जहाजों पर हुए हमलों पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 मौतों की पुष्टि करते हुए कहा,
4: जो वहां पर अटैक हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए, इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमरीकी CDA को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपनी प्रतिरोध अपना विरोध जताया कि इस प्रकार का हमला को बंद किया जाए। हमले से क्षति हो रही है और इससे हम लोग कई एक भारतीय नागरिक इसमें हताहत हुए
1: हैं। असम और नागालैंड के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में तेल एवं गैस के संचालन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। गुरुवार को हुए इस ऐतिहासिक समझौते में केंद्र सरकार भी शामिल है। इस त्रिपक्षीय समझौते को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
5: ऐसा नहीं है कि इस चीज में भी सहमति है, आशंकाएं भी हैं, कुछ हमारा चला जाएगा ऐसा भय भी है, भाव भी है, परंतु दोनों राज्यों ने कहा, ये निर्णय किया कि अभी निर्णय जब आएगा तब आएगा 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है।
1: नागालैंड में तेल, गैस और खनिज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, इसके जरिए विदेशी निर्भरता कम की जा सकती है। अमित शाह ने इसका उल्लेख करते हुए कहा,
5: पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने मतभेदों को तुरंत दूर करने का भरोसा दिलाया।
6: दिस एग्रीमेंट इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग क्राइसिस एंड इंडिया इज इम्पोर्टिंग हाइड्रोकार्बन एट मच हायर रेट्स causing tremendous hardship to the people. I am sure that this arrangement on hydrocarbon will be implemented in letter and spirit as assured by Honorable Chief Minister of Nagaland. I can reiterate that Assam will also cooperate in the implementation of this agreement. Whenever there will be some dispute regarding the area of interest, we both will sit and will resolve it amicably.
1: पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी से नेताओं ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। 80 में से 58 विधायकों ने विधानसभा में अपना अलग गुट बना लिया है। वहीं लोकसभा के कई सांसद इसी राह पर चल निकले हैं। लोकसभा में 28 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस के कितने सांसद अभी बागी हुए हैं, इसको लेकर परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। वैसे 2/3 सांसदों के एक साथ टूटने पर उनकी सांसदी बची रहेगी। इस बीच राज्यसभा के 13 में से 4 सांसदों ने पार्टी और राज्यसभा से अपना त्याग पत्र दे दिया है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
0: तो श्रोताओं, आपने भारत से ये रिपोर्ट सुनी और नाटक हमारे श्रोताओं की पसंद है उसका पता मुझे चल रहा है, क्योंकि मेरे पास में संदेश तो आ ही रहे हैं। नाम अभी तो नहीं बता सकती, आप सबके नाम ड्रॉ में जाएंगे ही। और हाँ, मैं आपसे जानना चाहती थी कि 80 के दशक के संगीत में ऐसी क्या खास बात है या क्या कोई बदलाव महसूस हुआ। चलिए उसके बारे में भी सोचकर आप मुझे अपने संदेश अवश्य भेजें 04397997667 पर। और आइए अब बात करते हैं कि सिडनी में जो दूसरा एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, ये खुलने जा रहा है 25 अक्टूबर को, और कह सकते हैं कि अधिक उड़ानें होंगी, बेहतर सुविधाएं हैं और नए अवसर हैं। तो क्या खास है इस एयरपोर्ट में और सिडनी के निवासी इस विकास को कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। इस रिपोर्ट में आपके लिए लाई हैं भव्या पांडे।
7: दशकों से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और वेस्टर्न सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब आधिकारिक रूप से रविवार यानी 25 अक्टूबर को आम यात्रियों के लिए खुल जाएगा। ये सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं है, ये सिडनी की हवाई यात्रा व्यवस्था यानी एयरवे सर्विसेज में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले सालों में पूरे क्षेत्र की उड़ानों और यात्रियों के एक्सपीरियंस को ही बदल सकता है। इस नए एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान 25 अक्टूबर को भरेगी। जेटस्टार की एक फ्लाइट गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना होगी, जो इस आधुनिक एयरपोर्ट की मेडन वॉयेज यानी पहली उड़ान होगी। इसके साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स के टिकट बुधवार से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रियों को अगले साल की यात्रा के प्लान्स बनाने का मौका मिलेगा। जेटस्टार और क्वांटस इस एयरपोर्ट से संचालन शुरू करने वाली पहली दो बड़ी एयरलाइंस होंगी। जेटस्टार अक्टूबर से ही यहां से मेलबर्न, ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के लिए हफ्ते में 21 फ्लाइट्स चलाएगा। वहीं क्वांटस मार्च 2027 के अंत से मेलबर्न और ब्रिस्बेन के लिए 8 साप्ताहिक सेवाएं शुरू करेगा। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से सिडनी के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों पर दबाव कम होगा और ट्रैवलर्स को बेहतर विकल्प यानी ऑप्शंस मिलेंगे। आइए जानते हैं सिडनी निवासी वंशिका नालवा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है।
8: Of course, I feel like जो मेन एग्जिस्टिंग सिडनी का एयरपोर्ट है उस पे लेस प्रेशर होएगा एंड पोटेंशियली इट विल बी अ स्मूदर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस एज वेल। ऑल्सो ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट, जहां तक मैंने सुना इट इज मोस्टली फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट एंड इन फ्यूचर दे विल कंसीडर द इंटरनेशनल वन, तो फ्लाइट भी ज्यादा हो जाएंगी इन कंपेरिजन टू अभी जहाँ पे है ना एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो उधर टू एंड फ्रो ज्यादा है। Also, operations again greater flexibility. I feel like more flights, more timings, है ना ज़्यादा options रहेंगे for travelers as well. I think would be a positive impact on the job market as well. Would provide jobs to people who are in aviation, logistic retails, etc., etc.
7: ऐसा ही कुछ कहना है एक और सिडनी रेसिडेंट का। मयंक इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का एक अलग पहलू हमारे सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स उनके जैसे अंतर्राष्ट्रीय छात्र यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा।
9: या ऑफ कोर्स इट्स अ रियली गुड थिंग कि एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, सबका ट्रैवल टाइम बच रहा है, वेरी इजी हो जाएगा क्योंकि सिडनी में अभी एक ही एयरपोर्ट है एंड सेकंड वाला बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों को, लाइक 2 आवर्स ऑफ ट्रैवल बचेगी इस चीज से, प्लस इतने स्टेट में इजी हो जाएगा तो लाइक डिस्टेंस बचेगा, ट्रैवल कॉस्ट बचेगी, तो काफी सारे फायदे हैं। प्लस सिडनी एंड ऑल इस साइड ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत फायदा होगा, नई जॉब्स मिलेंगी। या आई वुड से कि या इट इज रियली गुड टू हैव अनदर एयरपोर्ट।
10: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of the entire crew, I'd like to welcome you aboard flight 237 with non-stop service to New York.
7: आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि सिडनी के मौजूदा किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट की तरह ही ये एयरपोर्ट रात को भी बंद नहीं रहेगा। ये एयरपोर्ट क्रू फ्री होगा, यानी यहाँ से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच भी उड़ाने संभव होंगी। इसका मतलब है कि ट्रैवलर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और एयर ट्रैवल पहले से कई ज्यादा सुविधाजनक और कंफर्टेबल हो जाएगा। वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट के CEO साइमन हिकी ने कहा है कि ये एयरपोर्ट वेस्टर्न सिडनी के लोगों के लिए एक नई आजादी जैसा है, जहां वे बिना समय की पाबंदी के देश भर में यात्रा कर सकेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ये लॉन्च वेस्टर्न सिडनी के पूरे ग्रेटर सिडनी एरिया के भविष्य में विश्वास का प्रतीक है। आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट शुरुआत में सालाना करीब 10 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, लेकिन इसकी योजना यहीं तक सीमित नहीं है। भविष्य में इसकी क्षमता 82 मिलियन यात्रियों तक बढ़ाने की तैयारी है, जो इसे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट जैसे बड़े वैश्विक हब के स्तर पर ले जाएगा। वंशिका का कहना है कि इस एयरपोर्ट के बनने के साथ मुख्य किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट पर जो प्रेशर होता था वो कम हो जाएगा और ये जो एयरपोर्ट है ये कई यात्रियों के लिए मेन एयरपोर्ट से पास पड़ेगा।
8: पर्सनली मैं जहाँ रहती हूँ आई थिंक वहाँ से द एयरपोर्ट इज ओपनिंग समवेयर नियर पेनरिथ एंड राइट नाउ आई लिव समवेयर नियर पैरामैटा, तो इट वुड बी अ 30-minute ट्रेन राइड एंड बाय कार मे बी 40-45 minutes, सो नॉट दैट फार इन कंपैरिजन। जो मैस्कट वाला एयरपोर्ट है इट इज लाइक 1 hour अवे, राइट, एंड ऑल्सो सिटी रूट पे है सो देर इज जनरली मोर ट्रैफिक। ऑन द अदर हैंड दिस इज ऑन द ऑपोजिट साइड, सो होपफुली लेसर ट्रैफिक दैन द सिटी वन।
7: सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए ही नहीं बल्कि फ्रेट के लिए भी ये एक बड़ा केंद्र बनता जाएगा। क्वांटस की CEO वैनेसा हडसन ने कहा है कि हर हफ्ते 850 टन से अधिक कार्गो इस नए टर्मिनल से गुजरेगा, जिससे ई कॉमर्स और तेज डिलीवरी सेवाओं का बड़ा फायदा मिलेगा। आइए एक नजर डालते हैं इस एयरपोर्ट के इतिहास पर। वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट की कहानी सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि ये कई दशकों की राजनीति, योजना और विवादों की कहानी है।

0: तक ही पूरी हो पाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस प्लान में अब कॉस्ट के बढ़ने का खतरा भी है, जो कि करीब 2.2 बिलियन तक और बढ़ सकती है। ऐसे में NSW सरकार और कॉन्ट्रैक्टर वी बिल्ट के बीच फंडिंग को लेकर तनाव भी देखा गया है। सरकार का कहना है कि वे अतिरिक्त लागत नहीं देगी, जबकि कंपनी ने काम की गति कम कर दी है। इसके अलावा जर्मन बिल्ट ड्राइवरलेस ट्रेन्स की डिलीवरी में देरी और सेंट मेरी स्टेशन पर बिजली की समस्याओं ने भी इस प्रोजेक्ट को प्रभावित किया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं। नए फ्लाइट पाथ्स को लेकर 2023 में ही स्थानीय समुदाय ने अपनी चिंताएं सामने रख दी थी। खासतौर पर ब्लू माउंटेन क्षेत्र के लोगों ने कहा था कि विमान शोर उनके जीवन और पर्यावरण, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पर असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के साथ आम तौर पर कुछ न कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय यानी सोशल या एनवायरमेंटल बहसें जुड़ी ही रहती हैं। हालांकि मयंक का मानना है कि ये जो विकास है, ये उनके शहर को बाकी शहरों से अलग बनाएगा।
1: ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर ग्रीन पर फोकस करता रहता है, कुछ ज्यादा चीजें बनती नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, लाइक नई चीजें दिखती है, लाइक दूर से दिख रहा है कि एयरपोर्ट्स है एंड ऑल है, क्योंकि जितने भी लोकल्स एरियाज हैं यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ग्रीनरी करके। तो आई वुड से कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बन रहे हैं तो इट्स गुड।
0: तो ऐसे में इस एयरपोर्ट से हम क्या उम्मीद करें? क्वांटस ग्रुप की सीईओ वैनेसा हडसन ने भी कहा है कि ये एयरपोर्ट वेस्टर्न सिडनी के लाखों लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा, जिन्हें अब तक उड़ान पकड़ने के लिए किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट तक लंबा सफर तय करना पड़ता था। साथ ही ये एयरपोर्ट सिर्फ उड़ानों का केंद्र ही नहीं, बल्कि वेस्टर्न सिडनी के डेवलपमेंट, रोजगार और वैश्विक कनेक्टिविटी का प्रतीक बनेगा। कई सारे लोगों के लिए ये एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत या रनवे नहीं है, ये एक लंबे इंतजार का अंत है, एक बड़े शहर के भविष्य की शुरुआत है और एक ऐसा कदम है जो सिडनी को वर्ल्ड एविएशन मैप पर और मजबूत करेगा। 25 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, कहा जा सकता है कि ये वेस्टर्न सिडनी के लिए सच में एक नई उड़ान की शुरुआत होगी। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
2: थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू अगेन सून।
3: तो आपने जाना है कि सिडनी के दूसरे एयरपोर्ट की बात क्या है। मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद में।
4: SBS South Asian plays here.

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
2: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
1: आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
3: SBS kickoff.
4: The new music station celebrating football anthems from around the world.
5: It's time for Africa.
6: It's live now
4: on DAB Radio, the SBS audio app.
7: We got the game.
8: Online and SBS on demand.
2: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
9: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, इस पूरे हफ्ते आपने सुना किंग्स बर्थडे।

समय भागता गया और देखिए बिल्कुल कार्यक्रम की समाप्ति पर हम पहुंच गए। आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूं, चाहे अधूरा है ये, और आपसे मुलाकात करूंगी कल के कार्यक्रम में। अनीता बरार का नमस्कार।

0: all the Bollywood hits you could ever want.
1: This is the Bollywood Session on SBS South Asian.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: Here we go again.
1: Ready?
2: Here it comes. Hours and hours of the most pumping hits for your weekend. Desi Dance Party on SBS South Asian.
3: आ गए ना सब पार्टी में अब खींच रहे फोटो किससे करके
4: किस

कांटे कांट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं आज किसका ख्याल है।

उसके इशारों पे मैं चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन, मिट्टी पे पड़ जाओ उसके कदम, करते सख्त जमीन को फिर से नरम।

तूने किया कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
1: ए राजा बजाना।

0: हमारे बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद, खाना खा के जाइएगा।
1: Party hits for the weekend. Desi Dance Party on SBS South Asian.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: तब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: SBS South Asian, your news from here and hits from home.

सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुए, हजार राता में वहाँ भी एक रात हुए, आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए।

0: SBS South Asian.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।